0: is one of those children who, with your assistance, has the honour of being a Havis. And that too from only £29 per month. Help UKIM by sponsoring a Havis and get rewarded by up to 70 times blessings. For donations, call now or visit ukim.org.
1: होशियार रहें। कुछ लोगों ने फ्रॉड का एक नया तरीका अपना लिया है। वो आपके घरों पर इंस्पायर एफएम और दिगर चैरिटीज के नाम पर चंदा मांगने आते हैं। इनको कुछ भी देने से पहले इनका आईडी कार्ड या फिर इस चैरिटी से राब्ता करके तसल्ली कर लें कि कहीं आप गलत शख्स को रकम तो नहीं दे रहे। इंस्पायर एफएम कम्युनिटी अवेयरनेस मैसेज।
2: From the studios of Inspire FM, the time is now 1:30.
3: Assalamu alaikum. You're listening to Inspire FM. We're now going to play for you the Arabic recitation of the Quran by the world famous qari Mishari Rashid Ali Farsi from Kuwait.
4: A'udhu billahi minash shaitan.

कहो कि अगर तुम जानते हो तो बताओ कि वो कौन है जिसके हाथ में हर चीज की बादशाही है और वो पनाह देता है और उसके मुकाबिल कोई किसी को पनाह नहीं दे सकता।

0: आजकल लोग सड़कों पर चलते फिरते चोरी के मोबाइल फोन, लैपटॉप, कैमरा और इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें फरोख्त करते हैं। चोरी की चीज़ें खरीदने का मतलब आप इस चोरी में शामिल हैं, इसलिए चलते फिरते लोगों से चीज़ें हरगिज़ ना खरीदें, बल्कि ऐसे अफराद के बारे में पुलिस को आगाह करें। इंस्पायर एफएम कम्युनिटी अवेयरनेस मैसेज।
1: A whisper of peace

बचपन से सुनते आए हैं, ये नहीं कहना, वो नहीं करना, सवाल नहीं पूछना, और फिर इसी रवैये से हमारे ज़हनी और माशरती मसाइल उलझते चले गए। हमारे मसाइल हमारे हालात से नहीं, हमारे ख्यालात से पैदा होते हैं, और ख्यालात दुरुस्त किए जा सकते हैं। मैं हूं आज़ाद, और अगर आप भी चाहते हैं कि हम सब आज़ाद हो सकें अपने ही पैदा किए हुए मसाइल से, तो बात कीजिए, क्योंकि अब बोल के लब आज़ाद है तेरे। ओनली ऑन इंस्पायर FM।

0: भागने की कोशिश करोगे तो तुम पर आग का शोला और धुआं छोड़ दिया जाएगा जिसका तुम मुकाबला ना कर सकोगे। ऐ जिन्नो इंस, तुम अपने रब की किन किन कुदरतों का इनकार करोगे? आग का शोला और धुआं छोड़ दिया जाएगा,
1: असल में शुआज और नुहास के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। शुआज उस खालिस शोले को कहते हैं जिसके साथ धुआं ना हो, और नुहास उस खालिस धुएं को कहते हैं जिसमें शोला ना हो। ये दोनों चीज़ें यके बाद दीगरे इंसानों और जिनों पर उस हालत में छोड़ी जाएंगी जबकि वो अल्लाह ताला की बाज़पुर से बचकर भागने की कोशिश करेंगे।

अगर आप कम्युनिटी के लिए कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो इंस्पायर एफएम की टीम से आज ही रابطہ कीजिए। इंस्पायर एफएम पेश करता है कम्युनिटी अनाउंसमेंट्स।

0: Alcoholic, let me remember you in wealth and poverty.
1: बचपन से सुनते आए हैं, ये नहीं कहना, वो नहीं करना, सवाल नहीं पूछना, और फिर इसी रविश से हमारे जहनी और माशरती मसाइल उलझते चले गए। हमारे मसाइल हमारे हालात से नहीं, हमारे ख्यालात से पैदा होते हैं, और ख्यालात दुरुस्त किए जा सकते हैं। मैं हूं आजाद, और अगर आप भी चाहते हैं कि हम सब आजाद हो सके अपने ही पैदा किए हुए मसाइल से, तो बात कीजिए, क्योंकि अब बोल के लब आजाद है तेरे। ओनली ऑन इंस्पायर FM।

0: Windows today on 01582 483 777 or visit us at Unit 10E, Britannia Estate, Leegrave Road, Luton.
1: Assalamu alaikum and welcome to Inspire FM Summer Tips. Let's have a productive summer break. Make it a habit to pray your voluntary sunnah prayers at home, following the Prophet's tradition to bring light, peace and blessings into your living space. Thanks for tuning in and keep listening for more only on Inspire FM.
2: Enjoy quality and tasty 100% authentic halal Chinese and Thai food from Gao Express, brought to you by the team behind Topps Pizza in Luton. Choose from all your delicious Chinese and Thai favourites, then order for delivery or collection from Gao Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk, or like Gao Express on Facebook.
3: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किरण है। कोट कश्मीर ऑर्फन्स रिलीफ ट्रस्ट मेरा एक खूबसूरत घर है, जहां मेरे साथ सैकड़ों यतीम और बेसहारा बच्चों की तालीम और तरबियत और पुरसकून माहौल में परवरिश हो रही है, और ये सब कुछ आपके तावन से मुमकिन है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह करीम आपको सदा सलामत रखे, और उम्मीद है कि आप इसी तरह अपना प्यार मोहब्बत और तावन जारी रखेंगे। कोट यूके ऑफिस 03001237474 कोट.org.uk।